किसी ने बनाया कितनी ही कोशिशें की लेकिन सब कुछ करने के बावजूद आपको वो नतीजे नहीं मिल पाए जो आपने चाहे थे लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं अब आप 5 मिनट से भी कम समय देकर वैसा शरीर हासिल कर सकते हैं जैसा आपने हमेशा चाहा था।

0: तो क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सेहतमंद लोगों में 10 में से 7 यूरोपियंस शामिल हैं और इटालियंस खास तौर पर मशहूर हैं अपनी परफेक्ट बॉडीज के लिए। ये बॉडी आप भी पा सकते हैं। याद रखिए, फिटनेस पंप के साथ आप परफेक्ट 6-in-1 वर्कआउट हासिल कर सकते हैं जो आपको उतना ही फायदा पहुंचाता है जितना कि जिम में रखी 6 महंगी मशीनें। तो दोस्तों, पर जिम जाने की क्या जरूरत है?
1: Si vous allez dans un village, vous verrez qu'aujourd'hui la condition des pauvres est la suivante. Aujourd'hui encore, on nous tient en quarantaine. Aujourd'hui encore, nous n'avons pas accès aux métiers des gens de haute caste. C'est ça la condition des pauvres dans ce pays. Quand je dis pauvres, c'est surtout les Dalits qui forment la majorité des pauvres dans ce pays.

धान था इन्हें मंदिर में जाकर रखा। ना रखने की माँ बे, ना रखने की माँ बे।

0: अगर तुम्हें अपनी जान से प्यार है तो अपना पुराना धंधा शुरू कर दो। कल जो हम यहां से गुजरे तो तुम्हारा यह जुआ खाना नहीं है, मुख्तार सिंह का वही तबेला देखे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम भी गाय भैंसों की तरह घास चबाते हुए नजर आओगे।
1: Et on enchaîne avec une reprise.